0: रेडियो प्रकृति FM 93.4 मेगाहर्ट्ज।
1: नया बरस को सुबह का मनना।
2: नव वर्ष 2083 साल को पावन अवसर में हमी हमारा ग्राहक वर्ग उद्योगी व्यवसायी लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका समस्त नेपाली जनहरूमा सुख शांति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगल।

0: दीर्घायु एवं उत्तरो उत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: हामी कहाँ कृषि क्षेत्र का लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री हाते ट्रैक्टर कम्बाइन मिल रोग तथा घास काटने मेसिन चक्की आटा पानी तान्ने पंप इलेक्ट्रिक मोटर मिक्सर मेसिन कटर मेसिन रंडा ड्रिल मेसिन लगायत सम्पूर्ण सामग्री नया वर्ष को अवसर में विशेष अफर का साथ बिक्री वितरण गरिनुका साथै सम्पूर्ण मेसिनरी सामग्री को पाठ पूर्जा पनि उपलब्ध छ। गुप्ता मेसिनरी सप्लायर्स तुलसीपुर 5 बस पार्क दाङ फलफूल टहरा को ठीक अपोजिट साइड प्रोप्राइटर मेरेलाल गुप्ता मोबाइल नंबर 9857038781 र 9849073877 एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोला। नव वर्ष 2083 साल को पावन अवसर में हामी हाम्रा ग्राहक वर्ग उद्योगी व्यवसायी लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका समस्त नेपाली जनहरूमा सुख शांति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। हामी कहाँ दूध दही घिउ पनीर ताजा फलफूल चिसो जूस लस्सी चिया कफी बर्थडे केक लगायत सम्पूर्ण डेयरी आइटमहरूको सेवा उपलब्ध छ। हाम्रो डेयरी सप्लायर्स तुलसी 5 सल्यानडोर दान नेपाल टेलिकम को ठीक अगाडि प्रोप्राइटर कमल केसी र मनिषा केसी मोबाइल नम्बर 9849924354। नव वर्ष 2083 साल को पावन अवसर में हामी हाम्रा अभिभावक शिक्षक कर्मचारी विद्यार्थी शिक्षा प्रेमी लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका समस्त नेपाली जनहरूमा सुख शांति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। अनुशासित वातावरण गुणस्तरीय शिक्षा र अनुभवी शिक्षकबाट अध्यापन हुने भएकाले आफ्ना नानी बाबुहरूको उज्जवल भविष्यका लागि समयमै भर्ना गरौं।
2: नर्सरी देखि कक्षा 9 सम्म नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना खुला गरिएको जानकारी गराउँदछौ। प्रिन्सिपल मधुसूदन केसी एवं समस्त हिमाल एकाडेमी परिवार तुलसीपुर छ दाङ मोबाइल नम्बर 9857020351।
1: नव वर्ष 2083 साल को पावन अवसर में हामी हाम्रा ग्राहक वर्ग उद्योगी व्यवसायी लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका समस्त नेपाली जनहरूमा सुख शांति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
2: हामी कहाँ सीपीएल का गुणस्तरीय घर वायरिंग का सामान तथा एसी पाइनुका साथै दक्ष मिस्त्री द्वारा थ्री फेस र सिंगल फेस को वायरिंग र एसी जडान को काम पनि गरिन्छ। हिमाल इलेक्ट्रिकल तुलसीपुर 5 अंगलाइन दान संचालकहरू बामदेव विष्ट टेक बहादुर केसी र यज्ञ बहादुर बुढा फोन नम्बर 0825311058 मोबाइल नम्बर 9857020731 र 9857091111 सेवा गर्ने मौका दिनुहोला।
1: नव वर्ष 2083 साल को पावन अवसर में हामी हाम्रा सेवाग्राही स्वास्थ्य कर्मी चिकित्सक कर्मचारी लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका समस्त नेपाली जनहरूमा सुख शांति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। स्वस्थ खानपान र बानी व्यवहार में ध्यान दिऊ सधैं निरोगी रहूं।
2: हामी कहाँ विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा दैनिक बिरामी चेक जाँच गरिनुका साथै अत्याधुनिक भिडियो एक्सरे र ल्याब सेवाको समेत सुविधा रहेको छ। हितायु पोलिक्लिनिक प्राली तुलसीपुर छ गुमराह चोकदेखि पूर्वतर्फ संचालक डाक्टर देवराज केसी फोन नम्बर 0825905062 र मोबाइल नम्बर 9847903320।
0: नव वर्ष 2083 साल को पावन अवसर में हामी हाम्रा ग्राहक वर्ग उद्योगी व्यवसायी लगायत स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका समस्त नेपाली जनहरूमा सुख शांति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: हामी कहाँ स्टील अल्मुनियम जिप्सन डिजिटल इन्भर्टर वेल्डिङ मेसिन ग्रिन्डर मेसिन ड्रिल मेसिन कटअप मेसिन का साथै बिजुली का सम्पूर्ण सामानहरू मिक्सचर मेसिन पानी तान्ने मोटर राइस कुकर पंखा लगायत सम्पूर्ण मेसिन का सामान पाइन का साथ ही मरमत जय विश्वकर्मा ट्रेडर्स एंड मरमत सेंटर तुलसीपुर 5 पुलचोक बस पार्क दांग फलफूल टहरा को ठीक अपोजिट प्रोप्राइटर इंद्र बहादुर बिक र मान बहादुर बिक मोबाइल नंबर 9805597052 र 9815065535 नववर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा हामी हाम्रा ग्राहक वर्ग उद्योगी व्यवसायी लगायत स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपाली जनहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
2: हामी कहाँ कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण मेसिनरी सामानहरू पाइनुका साथै धान जौं काट्ने मिनी रिपर ब्रश कटर कुटानी पिसानी मिल फर्निचरमा प्रयोग हुने पावर टुल्सहरू बिक्री वितरण गरिनुका साथै मरमत पनि गरिन्छ। जय किसान ट्रेडर्स तुलसीपुर 5 सल्यान रोड दाङ नमस्ते मिनी मार्केटको भित्र मोबाइल नम्बर 9848742364 र 9849484548। नववर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा हामी हाम्रा ग्राहक वर्ग उद्योगी व्यवसायी लगायत स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपाली जनहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
1: हामी कहाँ ग्यारेन्टीका साथ सुनसादी खरिद बिक्री गरिनुका साथै अर्डर अनुसार गहनाहरू तयार गरिन्छ। जय माता दी ज्वेलर्स प्राली तुलसीपुर 5 क लाइन डाङ प्रोप्राइटर मदन कुमार केसी फोन नम्बर 082-521-365 र मोबाइल नम्बर 9858-20078।
2: नववर्ष 2083 सालको पावन अवसरमा हामी हाम्रा सेवाग्राही स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सा कर्मचारी लगायत स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका समस्त नेपाली जनहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। स्वस्थ खानपान र बानी व्यवहारमा ध्यान दिऊ, सधैं निरोगी रहौं।
1: हामी कहाँ विशेषज्ञ तथा अनुभवी चिकित्सकद्वारा दैनिक बिरामी चेक जाँच गरिनुका साथै स्वदेशी तथा विदेशी औषधिहरू सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गरिन्छ। जीवनदान मेडिकल तुलसीपुर 6 घुराई रोड दाङ लक्ष्मी सनराइज बैंक भएको घरमा प्रोप्राइटर देवराज चन्द मोबाइल नम्बर 9654431